0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड एब्यूज होता है, उसमें छोटी उम्र की शादियां होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada ngerasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usia aku yang sudah siap. Di usia aku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin atau di atasnya, karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi dan lain sebagainya gitu.

0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड एब्यूज होता है, उसमें छोटी उम्र की शादियां होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada merasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usiaku yang sudah siap. Di usiaku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.